0: जात गाहाम जे गयाम नकाई सों बानियार अख्लायमान तमुंग न गयाम ख्लायना थांखांके गाहाम दालनि कलब ख्लायजाक गयाम चारानो न गायना नांनाय आबुनि बागै सों बयलानो दस फुट हाक्साल हाक्सालके हानो जगुई नाहारना नांनाय आबुखे उजे बागान खायना थांखांके ओंखाय हानो जगुई पायखेंके सों आरो मुस्कि गोरान हा एबा खाबा जैब सारक सापुलुनाय आजागाव आजे हाखर जगजाग हाखर सों सुपुंगै दननानै नांनाय आजराव वादै फाया हंखेबा दै लुनानै नांनाय फियाबा ताबुनिहाय वादै रक फायदोंमानि मल हंखेतो दै लुना नांग्लाक आबु गयाम कायना बागै बेलायनो काहाम जराहनि साजागु ओ हाखर जगजाग दै मिसकि सुपुंजाग हावो गयामनि कलब चारा जे कलब खायजाग चारानो सों काई हाखर सक मानि दस दिन यागुलो हंके सों आरो काई मारनाय गयाम बोथायनि जे बोसलैनि चारा हांखे गयाम बोथाय रगासो दाक्तिख्लाय थाया हायनि बागै सों जात गाहाम गयामनो न सों कलबख्लायि आ कलबनि जे चारानो न गायनानै नांनाय तमुंनो सों गयामनि बिसिंदि सों रां पैसा आजिना हंकेता गाय आबाहाय केन बनताय नायकानि रख्लायनो थांदैनासो दै रग दलुना नांगे आमाहाय केन डाक्टिन बेसि सानि आगलो न जात गाहाम जे गयाम हंके बथायो तै नगो चामा बारा सों हाइकेन फालै रां पैसारक आजि मानो ग्यासक जरा सों खाना लायगे गयाम कायमानो रगै कक थाइसा थाइनि हाइकेताबो सों साखामनि कक खाना लायसियन हायदेना
1: अजरो जों थालायनि साखामो डेंगु नतै जों कक्लाम सालायनाय फियाबा जों नायनायखेंखे नुगो डेंगुनि जों हायुं गोनांगै डेंगुनि साल पालायलायमानि फियाबा जों षोल' मे एबा खोबा मे तालनि 16 सालो वाल्ड डेंगु दे पालायजागै दङ हायुं गोनांगै फियाबा जों अबो जिनि वातै मल फायनानै सेखांनो अबो जों सागथारै सायमानानै नांगौ एबाखैबा हजा खालायनानै बागै अ साल पालायजागै दङ फियाबा दिनै जुलाइ ताल जों बोसोर जरातै डेंगु बेमारनो कासुना बागै जों बोसोर जरातै हजाग दं दे अ बेमार ओंखाय तामुं अबनतै कग्लाम सालायना तामिखाय जों जतन वाते वानानि सिगां जों वाते साजागै दङ वातेर वाखायनियांगे कुनु जागाव फानाव मुंसासो थायो फानाव दै गोसारि तातनि आरो तुमुनो दै गोसावै दङायगे आरो थाम्पुनि बुतै आरो तामहिनाय बन बुतै आरो एरैमानो दै आबुनि हैते थाम्पुइ बाखायगे थाम्पुइ वारसाक मानि बोखाखदै खेलायै डेंगु बेमार अङै मानो डेंगु बेमार फियाबा त्रिपुराव गोबां खुलायै नुजागै दङ जिनि आरो दे अबुनि बागै अ वातिमल फायखाहिंखे न जों डेंगुनि बागै केबो केबोनि लांमा चमानि र जों नुजागै थाङो एक्चुलि जों डेंगु तामनहिन तुमुंन सानानि थाखायहिंखे एटलिस्ट मस्किटोहिनि जे कायसा थाम्पुइ दंमानि एडिसिन मंगै जे थाम्पुइ बिनि ब तुमुं न आबो बाय वार जाखायहिंखाय जिनि अ बेमार नंगहिनै साजागै दङ डब्लिउ एच अ नि बोखाक दैखेलाय दे कायसा हिंखै जिनि त्रिपुराव नुजागो तामहिंखै जिनि अब त एसियानि बिसिङाव गोलां आबोनो गारिबा आमेरिकाव अब अ थाम्पुइ वार जाखै अ डेंगु बेमार नंमानि अ एडिस

0: आशा जति रचामु खाना पनि अब सबै रचाउँदा रचाउँ नरक कक्टुक बाइक रंगदे 2326253 कक्टुक नंबर मोबाइल यूजर 03810 कोड नंबर रनन तापगदी अबुन करै सिने त्या कैसा कक्टुक नंबर तो नरक जतन छै मनो नाइ त्या कैसा कक्टुक नंबर उनका हेलो हेलो हेलो हेलो लामसगो समका बुरोनी
1: जानो
0: जानो जानो सरी और सम सबै र सब जग र सम उदमति बाय र सब जग र सम हुने न साओ दाखन लगी तंग दे ते साप तंग कक दुग क रंग ने न चिनि तगा कक दुग नंबर ब खुलक जाक तंग 9485007172 हेलो
2: फुंका हाम
0: लांसगो
2: और सब नहीं बाबो जो तुम खाई मान जाओ ले उड़ो मोती हाँ कमला पोती रो सब रुकांग बाबरो मुझे पाई जंगली खाना पाई लिया ये लिसा मुझे जो तुम खाना बुझी तो मुझे रन चुमरा बारी नहीं बोलो
0: आ दाकन हाँ भाई कॉल खाले मान बाकी नेगन आते ही शब्द होता हूँ कोक दुगो हेलो हेलो हेलो
2: हम दुगरानी दुगरानी फोन नंबर लगा

ना पानू मैं सोयद अपना समय चलो अपना समय जब कृष्णा करना मुठो किसी सिलाय ओ माया ना बुझना नांगना बाबुलो बुझना नांगना खुला समय जलना

चराइरंनि पान्दा बोख्रै बादल नि याखुल तंनाय लाइभ मनि कथमा राजमालानि कक खनार जागनाय आबुन याखुल नरक नरक बागै सोंमं तंनाय राजमालानि खनार जामनि आबुनि बिसिं तिनो सोंमंबो तंनाय नरक आबुनि साखलायनानि चायथकदि राजमालानि कथमा खनादि तै सिनि लाइभ मनि कखनो मुइतो नारदि তাই বনি সুমংনি উত্তরব সাকলাইনানি তাপক দিই

0: 他什么时候来信呢？
1: 并白查个他，并那么难哟，啥来信呢？呢？
0: 咦，
1: 很给我了去？
0: 什么搞的那八个查来去？你别把他那他什么八个查来去？
1: 他什么搞的嘛？那八个查来去他？
0: 咦，他不去啷个搞信呢？呢 ，baby， 老一下呢？
1: 啥么老一下？
0: 并你们来呢？
1: 哦，
0: 俺是刚搞完呢，呢，并白哈个。बिनी बाइनो के बो तेरे तेरे के नरो तबो के बिनी मनाय काशी नाय बिनी बाय बिन ककना फान फान के नरो
1: बिनी बाय हिंगा के बिनी मनाय नो के फान फान के नर खाता
0: ए ओलो के बिनी मनाय अनु तेरे तेरे के न दि नि साका
1: बिन बाइनो साका ता
0: ए ओलो के लंग चाओ एक चाओ एक लाइक्या हुर हुर के नर मांग नर मांग
1: Normang normang, hur hur ke, lokal longai cuy kelak kata, min mana ni?
0: Eh, kai cek kai hen mana? Bura pogja gay thangka.
1: Tam tu kau lak he? Urati hai kya?
0: Urati hai kya? Pos pogja kuat. Bura, ye kung yus tak kau des pogja.
1: Pos pogja uka. Tam tu kau lak he?
0: Lak he dol sit lang thang siuta.
1: Saya kai tu bini cuma ni lak he dol sit lang thang kata bura.
0: 这个都点什么呢？我老早是两趟过的。
1: 不啦。
0: 不啦，我老去不里做里家卡。这个来你，去个了。这个来你。
1: 去东门呢？
0: 去东门呢？不玩了，阿吉卡。
1: 啥不阿吉？
0: 奶奶。
1: 不里做。
0: 不里做。
1: 嗯。
0: 玩了阿吉嘛？你先不送了曼卡。
1: 啥不曼卡？不里做。
0: 不里做。不送侬侬上汤个，
1: 啥不上汤？
0: 冰奶奶外冰大不啦？你比就侬开大哥哥做不等卡？
1: 啥不做不等卡？
0: 冰你爸爸。
1: 做里家个做不等卡哒？冰么奈哟？当个人气比卡不？当个大头啥呢？冰你爸哟？大哥哥做不等卡哒？
0: 嗯。你爸侬开大哥哥做不等卡？嗯，给冰爸爸做里家个不呢？तो खिचारी खा इनके बिनी बिनी मनाई ना कांगे थाली रोक अपेल रोक चारी होता
1: इनके
0: बिनी बाय दुख नंग जगे नुआई रोक बिरमन नोगे बकरंगसान का
1: सबने बकरंगसान
0: नुआई ना
1: तांगीसान
0: बोबीरी थाना बगे नुआई अनु बकरंग कांगसा नुआई अनु बकरंग कांगसा इनके नुआई बरोह का不可能呢！熟悉白说出难八个，你妈咪女儿上那汤卡，妈呢不可能说不比汤卡。边爸爸上妈那开家，但不然边爸爸弄啥个卡手位，但不能让那那看给让妈利亚。比的汤卡，给让可他妈阿拉不白卡。
2: 阿南，怎么才看那卡？那外呢？给让可他妈，本来看那看到卡，害怕那不给些米些搞着砸卡，这不是来你八个？但是他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里
0: 他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里他们的人在这里baca di buku terabuk le jatuh nepal tak sa tak tui cici cacai ke punggu cong beka lalima bong berai kumurung gole modu nunani paikya baca di menai makang su sidi porina cuk sidi porina kokno pogi tetoni o cobui tong di ane kok tong orang nepaikya terabuk dorong no kok tang sanai Ani kok tang ni bumu mukra, bu pangsa kawa kramas ha. Wajaga misrum kesa. Quick quick ke, kurak ke, kisleng ke pai, pukse pukse ke. Baikra dia, menaik tamas ha. Nasi ke tongka dal sa. Ani kok tang orang apai ka.
2: Oh, hingga hamkong ma bay mari ni.Sabaya kok, abno jengno kenara ka? Tapi hingga jengno kenara nai, biri ni kering kau thuma, jengno kenara di, kumir bay sial ni kering kau thuma.
0: Ani pun biri debor ma, ang tabuk sanai, kerang kau thuma. 아니.

색색 보 하록 비니 셀랭니 보 셀랭 응가는 앙 따 야카디는 아니 바몬 부탕 더마 마니코 보바가라 하이 카이노 하자카 바카 길라마 샤바야 보노 Rasmalawo tongmani tipara. Rasmala tongmani tipara kogbai. Bebak sinabagi parayo shalai. Wanji kogo dormo bobagra tang sirika. Rasmala mungui jotoluku sinika. Bishi kolcha chini raja chalanka. खुकती खै राजा लुको पालायखा महाराजा थैजाखा जंगला मानै दैन्य बायप्रता बिनि बसला खरबनै प्रताप मानिको खतल बसला कोसु प्रताप न लुको Raja Kalayo Gurung Saya Bagi Luku Batharpayo Pan Ganang Bono Maya Salo Bathari Shanapati Batharo Bono Shukle Kalayo Kiri Jagai Rangamati Urnanka Osai Kharoksha Donono Huitonika Shanapati Rok Raja Unnanaileyo केने के गोशिया थिन्या किरी लायो चाकरा सिपाई अजमा खानांग सुगुई कक्साप खब साइसुंग आसुगुई बबगरा साजला खरक्षा तंग दन्न जरा काहम खलायन राजा बन हाय वान सुगुई कुमार जक नग थंका बन सिंका दन्नन ब जागव हुइका राजा सनामना बागै रुतो गो बनो शालका हम आचुरन हदि बनो आकक नाय कुमाजिक किरी करो बथाना दे नाय शिलिया बरनी बरो कुमाजिक साका सिया दन्न ब्रतं नंग सयके साखाय नायन बनो सङ हर रमै सिपाय अजा समाय तांखा सन्ताय न खुनगुइ या शिशु हरखा स्यादापति खरक्सि सिपाय तेलां मायुं करा बाहेके असाय न गथां दनन तुबुइ फायका चार तलानी किरिजा खरां कतै सेरायनि बिसि चिसा सिखु आनि अमर जतै याक्तार यक्ता मुनामृदि आनो बथारै चन्तानि नगो आं सेलेंगानो माइरां हान्तानि माइ चाहुइ तंगानो चन्ताय साओ आं समाय तांग्रखा बबगरा अंगाननं ताकिरि दिबखा सुखन्द्राय बलिनो राजा सनामतै चन्ताय दन्ननो खलायका आबतै बेबाग सेनापति रग दन्नन नगुइ बरक जतो खुलुम खराब बमै नफायुं थिजाखा धर्मव तंग्यानि नन तुलांगना फायो राजा खाइनानि नफानि धर्मनि ककनो मैतु खलाय काहाम खाय तंदि जतो लोको पालाय अकक सावै मन्त्री जतो बन तुकुरिखा सिंहासन आजुग्रुई जत खुलुमका लोकरग दन्न हुनैनै सालाइका आफ्रु दन्न मानिको राजा मुं बबग राजाफ्रु चाकरा सेनापति याफरका बसाजुग इसिरि कमला अंगो हानि हामजग बांग्ला बाहि रसापानो बुझिया बबागरा प्रेत चतुर्दशी सबाई

मा खना रेखा राजा रसापना साका तिप्रा कक बाई तंगथक जगै राजा खनाका खाबाई गिलामा कमला पुखिरी रेखा खुरुई तुयो जाबरा आसया कथार नि बागै मताई गुरु बामनो खोलम बेलाई हिसाकनि बरक धर्म धर्म सांगलाई बबगरा धर्मनि सामुं गिलामा तांखा बन शुक्र बई तेवासा अरसाका दन्न मानिको तिप्रानी अंबाई बबागरा हाइखै बिसिकिसा मालाइखा तिप्रा जत सिपाही अजानी कक मान्जाओई बबागरा मुंसा सामुं मान्जा तांगै आफ्रो राजानी सामुं आहाइखे उंखा राजानी खुंजु चन्ताइ कक बिति साका सिपाही गिला खरक्सी सेनापतिनी आंगमासा बामनसा सिपाही राजानी साय साय सिपाही सायबा सिपाही मानखा सेनापति जत सिपाहीनो बाग्रखा सुब्राय राजानी सिमी महाय वामानी सेनापति रक्से राजा सलाइमानी मासनो बुथारे तेई खरक्सा नो खायो बनो वानाय किरिमानी खाकलियो सिपाही सेखाय फानकरि इंगानो राजा फान गनां हंखाय किरि जागानो सायावि सेखाय मिनि सिपाहीनो सायमैया बरक आनो तामो खायनो ताहानि वालाय मुं बांदनानि नाय यासको बाय मानमा तामुं तुमुं रुवा नांनाय बियादि मानै तुमुं कम्पा ओंखाय सासुं साखबिनि लासिमा हाब हाफाय बन तुमुं खिबिखाय दाबाय तानसुय के मेसेंजा बन अबहायनुकै बेलाय कसां एबा थेंता ताउंदि सुकुंद्राय सालांमानी ककनो बुचिदि राजानि तमुं राजानि थानि गरिखाय लांमा सनाय राजानि कचां हुंके आं चन्तायजा साखा नन ककबिति आनि ककतै हिनके जोंगान जादि सालाइमा सोरोंदि नक्सिं तंगै राजानि बेमार ओंखा सादि लोको थगै ककबती गाहाम रेखा बबगरा साका मनैसा गाहाम बिति तै गरिखा रांग्री नायकानि सेनापति खलायो तालथामरमै राजा हामिया खलायो बबाग्रानि बेमार ओंखा बेबाग सिवो इसिरिफा सेनापति दग्लाम कासुओ सिसिनि सेनापति राजानि सामुं तांगो सलाइमुं सोरमों बबगरा नक्सिंगो सोरों इसिरिबाय राजा नुक्लाया वाइसा इसिरिफा मककनो खनाका किसा सेनापति आफ्रो बसाजोंनो सोंखा चामारि राजानि तामा बेमारोंखा साखा बसाजों आं किसा नकमानि मोनागो तंगो साग दुजाग बबागरानि दुखलाइमा बेमार इसिरि फा बुजिखा बबगरा हाइखेनो बेलाय दुखुमानखा सेनापति बबागरानो नायनामु सुंजागो चन्ताय खनाय बोखा गलै जागो राजा बेलायनो हामिया साखा चन्ताय खना लगि फायदि राजानो फुनुगनाय आफ्रो राजानो रुथारै चन्ताय फायो बबगरा चन्ताय ककबिति साबलाय खलनैसोग सिपाही आफ्रो नतबुइ कक हुइजाग फोरोंरेखा हयै चन्ताय ताल रुइ जेन फुनुंनाय दायुंबाय खरक फाटसा मातानाय फान गोनां सायै दग्लामतनिखा हरकथुग बबगरा मन पानजखा

राजा नायना थांग राजा नायना थांमासे सिपाया करा चंता इतलांगो हिमरोई दफरा काफरा सागेंखा राजानी सलैमा थंगै सिपाई अजमा खुलुमो राजानो नगै ककतुई साई राजा याका ग्रहका अजरमार खुलमै किफिलना नायखा बामनसा तालका खुलमफरु दायुंबाई बरमनो तानखा आफरो बेबाग सेनापति कसक नै इंखा सासुक बथारै सिपाईनि नक्सेका सिपाई अजमा नक्नि फान गनां पाइखा राजा सेनापति कताल सेनापिका गोरनि सिपाई हाय राजानि सिपाई सिनै रजाक सिपाई खलायो आवाय सर्दार सेनामो खाक्सा सिपाई बाय हाजारि सेनामो गिला सिपाई बाय चिसानै रजाक सिपाई हायके बाखा हायके राजानि सिपाई बिनिक रेखा दर्ना मानिको राजानि जरा सिपाई बरवा मंगोई अजारेखा खलाई राजा चंखा कतालखाई सिपाई अकरा सामुं उंखा जत दागिती बबागरा सेनापति मंत्रिनि छाई बबागरा कसुको दर्नमानिको राजा कहाम हिंजाको जरा लाखै महाराजा वांसुका बांग्लाहा सेक्नानी खाचं नाइख्या मेहरकोल पातिकारा हाय कामिरक बगासारी गंगा मंडल मुंगाकरक बेजरा सेखा ताई बानुगास नब विष्णुजुरी सेकै बेबाग्याको चबो गोर्ने बबागरा बर्दाखाट हाय दन्नमानिको सेखा सभाखलाय बर्दाखाटनि जमिदार प्रताप मुंगै राजाबाय कथाव गोर्नो याखारै हायकै बांला हा जत सेखबायखा आमचाय खासबै राज्य राखरेखा राजा सिपाही थाना सनामका आमसायो सिपाही मासानो आरो लस्कर खलायो आमसाय खबै सिपाही तै आसुखा आमचानि लोको आ लस्करनो रमखा लस्करनो रमै बरक तलांखा गोर चुक्लिबाय गोर राजानि बस्कां रेव गोर राजा मायुं बाय बर्थाना दागिखा याग्याकुं शिकल बाय बनो तलांखा बनो बथार सिनाय लस्कर बुचुओ सिपाही याकनि सेंग सेगै नाओ खरक खलसा बथारखा ब असेंग बाय माउद दागिरखा मायुं नो खेंग बाय जे चातै बुकुं बुखुक सेंबाय तानखा आ मायुं चिरगै बिरबुं खालांखा ते मासा मायुं तुबै दागिरि फिका सेंबाय फान खाय तानमानि बुवा चखा बिनि खाकत नुगै जत चाखा मलां हासुगन तंगो मुसुक फान गना तैवासा तानफुरु सें चखा बिनि हायखन मायुंबनो बथार मानमानि मक खनाय साका बबागरा गोरनि तामुं किफिल तुबुया बसकांगानि तालिखा चायानि हायके थैका सिपाही दन्नमानिको खा खामजागो मक खनाय थामचि तुलुंकाजाखा फान गनां बबागरा आमचाय यो रहरो रायकसाक सिपाही अखरा सिपाही कबां नकुई थर थर किरिखा जत लोको सिपाही बाई गदाल

फैका आमचानी चीनी जमीदार तंगनाय बबागरानो गबांगमा हेली रिफाइलेयो बखरक बशिक राजा बाई खाका किसिं ताई बशिक किसिं सिपाई अजा बिसिं सालसा बबागरा बशिकनो कबखा नरकनो साखफांनायना मुसुंखा कक फोरों रेखा त्रिपुरानि सिपाहीनो खरगसा सिपाही मरग दी

डङ्गरफानी राजानी जरा थानाङ सिओ थाना दन्नमानिकनि फुरो गसिलिया कथाना थानाङ सिओ मायुङ कोफोर मासा फाइमानी दिमासा बुबा गरा बनो सान हर मानी दिमासा राजा आदं थानांसि फाइ साव तिपारनै सेलें नों दाबो आनि खाव हाय खनाय जलि जाखा थानांसिनि बबा गरा आं मायुंनन रिया एबा रिया तिपरा सेबुगुंया आं तिपरा बबा गरानि मायुं कुफुरिया जबा पाइखेनिनि दिमासानि राजा खनाय जलि जाखा सिपाही तलां थानांसि बेर रखा आफ्रो तिपरानि रायबाई साखा थानांसिनो तिपरानो रिया मायं रेखा दिमा राजानो माहाय खनाय साखा थानांसि बबग्राय बबग्रायुं आनो मेचन मानखाय तलां दिमायुं हासिक साखा थाना लामसा दगा बिनि दिमा राजा बनो मान्जा मेसेन नानी तालदग सायतखा दिमासानि सिपाही हाइफनो थानांसिनो मान्या मेसेन लाय आबायनो कुकि राजाबाय मालाया लामाते कुकि तिप्रानो लाय नारिया राजा दन्न मानिक अकक मुंखनाय चबाव हरका रायकचा चाकरा सिपाही खरकसाई तिपरा सिपाही रहका लगी रायकचा

0: कुंती ते रलाई ठे रलाई तुमा नारो तिपरासानी रांगा माती तंगनाई तुयो सखलगै थोरुक बथारनाई हाय कक साबुई सिपाई नो दागिखा सोनामोरा खामा गुमती थेवई रखा सालथाम नारखा गुमती थेवई ते निसालो रिखा थेमा सबाई थोरुक रग जत तुयो साबुक बुओ मथांगदी हनै बरक चिरिग्लायो थामचिका जाखा जत पाथान कठं हाव हाव कसगो तुमा तै कसं दनमणिक राजा बिनी गोरन सङ्का केना सकल मन्नानी ककबुति सानका दियारी व आसुखनानि च्याङखा सन्ताइसा आरो तंखा नाइथकथक मानो खुंसा चेराइसा कसम चान्दाल बसंनी चान्दो आकांक्षा सोंखा साकाओ हायानि हरचिनि सालचिनि मान्दव तनिखा मतायो चान्दालनि बख्रग तानखा रायबाय लगी तलां बख्रग हुयै गुर सिपाही खर रोखा खरक फबै आटकाइसा हर खरां कतर पुंखा तिपरारक फायो हनै गोर खालांखा किरि जागै गोर सिपाय हासाल तंखा खिते पाहनै जतन रोंगै कुलखा खिते पाहनैनै खालांबायखा दाबुनि बेसेबंखै नरं बागै सोंमं गोर सिपाही रग तिपरानो चबा खालायना फायो थुरुग रग कराय रुं रग तुइनै आजराव तिपरानि सिपाही रग रायकचाग रायक समचं ब तुइमानो बान्थे ककडुक बाइक रंग दे 232-6253 ब तुइमानो बान्थे हेलो
1: हेलो हेलो किशोर
0: खुलम कलाम से गो ताकु दरनी साल कदम मन जा गलो छादे ताकु बांगलानि जे गोरनि सिपाही रग गोर राजानि सिपाही रग तिपरानो चप्रना बागिनाय करायबाय रुंबाय बरक फायना सेंखा तिपरा फायसिं आजरा तिपरानि सिपाही रग ब तुइमानो बान्थेरि गोमती तुइमा विक्रम सागर होननाय सिनि जागो ताबु बेलाय हामबाय ताखुनो आ तिमा तानै उल सालतामनि या उल तानै रेखांखेन बर कसगै थांबाय तिय कसगै थांबाय ताबुनि बेसे बतं नै चत्तग्राम न मेचनै राजा ताम ताक रेखा मेसन मानि या गोल बबग्र दन्न मानि क चत्तग्राम न मेस चत्तग्राम ओ मेसन मान या गोल बत्ता मता रखा हेलो हेलो
2: डाक्टर
0: सरे
2: जेबो काम तामो प्रश्न खलाय के आं तो यां चिनि आकाशवाणी बिलुवा तो इरि लिखले माने यां खबर औ तो हटा आबन जारे फेमारिया
0: आ चत्तग्राम न दन्न माने को मेसन खा ब अधि चत्तग्राम न कपलाय खलाय ना का अरन राजा न मेसन नै आबन जा गोल ब कैसा ताग रेखा तामो ताग रेखा

मताई बरंग तिपरा राजा थांका बनो तिपरा राजा थांका खर नाइना बागै नाहार नायका हासाम साका तंगै खामातै कय गोर सुनामका खर बिनि साको तंग तिपरा सिपाही खर बबगरा आचुका बफां साक्लम तला राजा छाका जत सकाल रिहिन्तु बोला नरक सकाल रक चाओ आनी लोकन तामुंग साइमे नर हैतुन खानो राजा ने कक खनाय सकाल बलाकमा खुलुमई बबागान कक खनारमा मंगलबार हर आं गुमती गुमती मथागान सालची जरा आं तै दुरीवान बगलाम न खनाय राजानि खाफुरका आफुरबनो राजबारव तलां थांका मंगलबानि हर सोनामखा बालिंनि कांखुं बालिं खासाय बगलामा बिरखा नुखुं मग्रानि कुसुक कुसुक न खाव बिरखा उलब दैमा साका बेखलाय रेखा दै साका तक साका रान साका खामा तांथकजाख गुरनि सिपाय गिलामा दैमा दै रानो हुसेननि कपाल बाय दै रुकुं तंखा सिपाय नक तांलाय दैमा नर नुहर हलंनि मताय तिपराव पुइतु बाय आबसुरिलाय आजागानि बुमुंसि तंमानि माचिसा आसाय फिया फो बनो नायखेवायसा हाके हामुंसिनिया ककमुं साका जावै नोंगै गुरक थुलायखा सिपाय खाका गिला चाली हपुं सापुं पुतला मानथकमा खाइमा चाली बुरुं लुका कंनै कायलेखा पुतलानि यागो साय साय लुका तंगो बगलामा बासाखा हर तै बिसिंनि हौ हौ पुंखा गुमति कचक पानी साय साय चाली कचक थांमा खामा साय साय लुका चुंगो आरो गिलामा गोरनि सिपाया तिमा रुकुंग थुमा जरा हाइके तुयो कुलगै पाथान आंखारा कचगै थांबायका जत कराय मायुं थुजाक जत सिपायते बंनि रुं लुका मसंजाक जत फुटलानि यागो तिपरा सिपाय दै नार खनै दङो गोर सिपाय किरिमानि बलं कासावै तिपरा रग आ बलं हर फनांग्रबौ हर जलायनि नाङनि बलं खामफ्राबो तिपरा रग लामा कासै नायसमखा दैमा कतर कचखा बेबाक सिपाय गोरनि सिपाय खारका किरि जाख्लाय हैतनखा करखा दारक मानलिया कराय कासाय खारबानि खासिलिया तानमां तांमां थांका तिपरा सारक थाना खुंबा सबायका आहर बरक गिला मायुं कराय बंनि मानखा आरो थाना खिबै हैतनखानि सिपाय खारो नगदग गातिव थां समाय तां साखा आसक सिपाय दंबो आंचें लांखा मनिसलाय गोबां सिपाय जेफुर ओंगानो बक्रिया तेवायसा फायफिमानो बिनिसाय सिपाय किसा ता फायथुन अरो आबो कुबै साखा आं समाय तांफिरो जेसिक सबा गोरों थुरुक पाथान फानो किसा सिपाय हिनके गादाबे बाक्सानो म सावै गुर किफिलका हैतनखा गुरनि बबगारा बनो बेलेखेको दिखा दनमानिको राजा ओंखा चबा कप्लाय बलिरुवै मताय चिब्रि नुख्लाय सेकाङ तिप्र राजा बरक बलिरुव साय साय वानजै तान्जाको बिसिव दनमानिको राजा

Kamu takut tak berkuat cung? Hari tahu sih jadi ni news headlines tamtam nale, na? Shaldok ni Indonesia, Australia, atau New Zealand berema Allah Menteri Bahagian Narendra Modi tini Delhi katalog kipule fahyka. Odes kait yang berema jora Menteri Bahagian Indonesia ni Rastra Bahagian Prabowo Subianto Australia ni Menteri Bahagian Anthony Albanese dan New Zealand ni Menteri Bahagian Christopher Lusno Bai Kok Salaika Menteri Bahagian Profesor Dr. Maniksha Watini tik saitu mata itu lomsa Ma am saino sai hamkrai gunang tang butang sanamna nida kika mia agotala wati mol mola te lamsa ma jengjalno yakangna rana te kuchu berne kolam phana o kok butang no dagi kha agotala ni sukanta academy o tini kolan ashram ni shakthama bai padmasri boram manai naresh chandra debramana boram yafajaka aromanjaka agini mla chikrung dr atul debrama fifa hayung ward hayung का फुटबल बातें मिया हॉर दीपोनी क्वार्टर फाइनल और थमंगो इंग्लैंड कप्लाई इंग्लिश सेमीफाइनल का सका यंग तिनी फुंगो अर्जेंटीना बाय स्विट्जरलैंड नी क्वार्टर फाइनल नी थमंगो अर्जेंटीना थाम्सा गोल नी फेयर बाय कप्लाई इंग्लिश सेमीफाइनल का सका आज जो तीस है मेका ताऊ से जोनी न्यूज हेडलाइन खबर ताकुते बुकुक जाऊं तिनी बागे आसिंग चितुंग काम तुंगी Tebu nyebo kantong nerdi panepan rote usha norbo emalanya kokosri orang basi sini jatuh nono kulungga hambat.

0: ग्राला
1: ताम खैनाबा लामा कसर मा जरगो
0: सामुंग नांगो कारिदि
1: ताम बमति सामु साइमान यदिबा
0: बुमुंग आजलाय सेंलाबाय नों कक्रगबो किसा आजलाय नसाउ
1: आतिखेन जिरिं सांगै फयो अक्रां खबा सागरले याता हिंदी निनि खाता
0: तुबुदि आसुग्रा दि अरनो उपंग साक्लम दल दल तंथगमै तंथला
1: उ उ ओ गाना गिनि रगो माजिलता भारी तंखना मतम तुइलेलक बाय आतमसा जीप सङै रिखाबले
0: ओ कुबिया खेतामसा आंबो बाहाय मानै रिखा ओ माजिला त अरो गाना रगो नंनाय
1: ओ बुफां तोला रगो फारि रिजाक्सक तामुसुक दंथत गुइ तंख आरनि बिसिंसे माजिलता बाहायबो जीप जीप नबारबो सरक सरक आंले तमा बहायसे मा तंसिउ आता सुराल
0: हानि बागनो आंनो न बाथाग्रा दिहंता तंग्रा दि जोंमिया जरा हाथाय कुसु कामियो ब्लानि नक जरा लेखलाखिना ताबुखे गुसुंनि नक निसिमि जांलासिनाय ओ माजिल त बाहायबा बेलानि नङै तंबायथले
1: इखो उ बसखानि नक न गुसुंनि नक होनना ब्लासा
0: उ बुसुंनि आबुदा
1: इ दामसा नोंखाय सिनगोरै तंखा हायदा
0: जोंनिमिया यांती हाबियाब्ला दिनि आबुखे यां नक बासिं क्लायखाताना हिन्दु आजलाय बासलायसिनो
1: आंले अबु फांतलानि कुतुंला सेमु सुंलिया साकलम दल दल गोसां थदर देसे माजिलता बाहायबो नवरै गदालै सोरो सोरोखाय बाहायबो जिब जिब खप्रजाक आबुना तमाबो खायसा हुइ तंखाता
0: ओंखा बासादि हिन्दी अरते कगलबना तानाजि
2: खाब्रो हाया सक्के सिखिंका हना ए थांला नासिगि नायग्राला
3: ओ मिया आदाबलाय सोंनि नग फायनै रक्सिब्ला
2: ओ बुजिखा माल माता लेखनाय रक्सिब्ला आब्र दिनि खासि नग लेखना फायलायखिनाता
0: नग फांरक नगरा तंबै
2: नगन तंबला फाजि यांगन वासन नुकाव गासा फायबायदि
1: बाबा आसक्के आमचाय बेराय नायमानि बिसुङो निनि नग थायनो खाखसमा मान फेमा गलायखाता
3: नरक मिया आदाबलाय सोंनि नग फायनै रगियादा
0: इ जोंनो बासै जोंबा तामसा सरकारनि मला रगबा
2: तामो बरकतै माल माता रग लेखा हुंकामन र
1: ताबुगा मत मा तमु रग खासिदो बरक लेखा मानि लगिबो माल माता बोले खानानि नांफो
3: तुइ रग दा कांबाय
0: इ बासै तुनि किसा मा नंग्रानाय
1: आव आंबो तुइनो किसा कांगै तंग मा हेंखा बासै तुइनो सिकां नंगै मा पाइग्रा सिनो तना
2: थांगै र फाइग्रा दे तुइ
3: तंबायग्रा दिखाय आं तुइ नाहारि फाइग्राना
0: आता कसं कक थाइसा सावै मा पाइग्रा सिनायखा
2: सादिता तुमा कङ सानानि
0: ककखे ताबुक सों फाइमिनि निनि नक तला द्रपनि सुकां द्रपनि सिमि ताबु इको निनो नक थाइजरा लामाते बुफां तला रक फारजाक सिबजाक ना आसुक तंथ तकंगै तंखाब्लासा
2: फारजाक नता फारजाक जाहांकाय अभाय साफ सुथरा अंगै मानो हाजा
1: आबरों न साबो फारै रिबायसा आताखस
2: दाय साबो फारनासा आंनो फुङाइखिनो फारै रिबायजा
0: आं साइमानखा अमखे निनि सामुंनो ओंखाना होनै
2: नों खाइजा मखाइ सावै मामानि गलायथासा सुर
0: ओ बुफां तलानि सिमि ताबु इको निनि नक थाइजरा फारजाक नखलाइतै नकबारि रगब सुरुं सुरुंखे फारजाक सिबजाक आबुनि बागैन आं वानसखा ओ लामातै बुफां तला रगब नोंनो फारै रिबायखाना होनैता
3: हिन्दि तुइ रग नोंबायग्रा दिखाय साबो तामनो फारमानि ककनो सालायदों
1: अ इको नोंनि नकनि आथा कसं लामा बुफां तला रग नखलाते नकबारि रग साफसुथ्राखाय फारमानि ककनो नसं सालायदों माने बासै
0: बुफां तला रग बो नोंनो हगै रिबायखाना ना आथा कसं
2: आको ताइ साबो हगनानि आंनो हगै रिबायदा
3: साल फायखै हाइरग मांगनता ताइ तामसा फुङाइखैनो आबरगनो बिनि सामुं तामसा
1: आंखै पंचायत हायाखैबा गामिनि बरसे पालखै हगै फारि रिबायखाना हिनि वानसुंमानि दाबासै
2: अंखा पंचायत हंनानि इ मांगनि कक साबर पंचायत न कारिले गामिनि बर रगब हायनता रां सपाइखे बागै चालायना सिमि जे पालियाया गामिनि बर रंनि ककन खायथ अर साजांनाय सिग्रै
3: साखाय सेजावै साजाकमानि हायक्लायानो बलं हकनानि तै लामा फारनानो कारिले बंनि नखला नकबारि रगसे फालायग्राया
0: आता गोसों निनि नखलाते नकबारि रग नुगै सों काहामखै साइमानखा नों खरकसा साफ सुथ्रा तंनायनो हनै
1: आंखाय उ लामा गानायनि बुफां तला रंन हगै सिरों सिरोंखै तनिमानसे बेलाय

0: वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मूज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मूज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मूज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका

0: ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फोकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, एशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता

0: ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
1: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800

पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।